बोल संक, तुम्हारी ऐसे तैसे ढपक ढपक लगे हुए हजाम हजाम कर, बंद कर रही नौ टंकी। अरे मुँह का देख रहा है, किसी राजा महाराजा को राजू राजू कह कर बुलाओगे का? ये बिलुआ को हजाम नहीं, बार बार कहकर बुलाओ बार बार, और वो भी इज्जत से बिल्लू बार बार, समझा के नहीं? नहीं दही खींच के पन्हैया एक ससुरा मार दे तो पटाक से।